0: जगत उधार हित दिया सत नाम है,
1: सच्चा नाम मारन बख्शिया
0: संत भगत नाम ध्यावे
1: है, जो नाम ध्यान है।

करके साहब सुंदर जी अज सतगुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी के अवतार धारण का गुरपुरब है। आप जगत गुरु जी ने 1678 बिक्रमी विच वसाख वाली पंचमी वाले दिन अज के सवापैर के तड़के माता नानकी जी के गोद नू भाग लाने वास्ते सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पंजवे सुपुत्र गुरता गद्दी के मालिक सतगुरु तेग बहादुर साहब का श्री अमृतसर साहब विच गुरु के महलों विच अज अवतार होया है। सब संगतां नू बधाई होवे महाराज अवतार धारण की। जगत गुरु जी अंतरजामी महाराज साहब सच्चे पातशाह जी के पास श्री अकाल तख्त साहब विच दासी के गोद विच महाराज साहब जी जदों श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी माता गंगा जी ने कहा कि सपुत्र का महाराज साहब जी का नाम रखो तो महाराज साहब श्री अकाल तख्त साहब आके मत्था टका के महाराज सच्चे पातशाह के चरणों के नाल ला के दासी जिस वक्त हजूर नू मस्तक टका के गुरु तेग बहादुर साहब जी नू गोद विच लै करके उठन लगी ते महाराज साहब जी ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सतगुरु छेवें पातशाह दीआं दोवें श्री साहबां जो समय आपदे गल च पै रहीआं होईआं मीरी अते पीरी जी दोवें सज्जे ते खब्बे पासे उन्हां दोहां श्री साहबां दे कब्जिआं नूं हथ पा लिआ महाराज साहब जी ने। दासी छड़ाउणा चाहुंदी है आप सच्चे पातशाह छड़दे नहीं हन। उस वे महाराज साहब हस के कहने भाव का नाम आप ही रखा लिया है उन्होंने तेग की बहादुरी करे जी जुलम की तेग है वह भी खुंडी पै जाएगी इन्हों एक रोम नहीं कट सकेगी इस करके इन्हों नाम तेग बहादुर अच तो अभी रखते हैं। क्यों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने श्री अकाल तख्त साहब बैठिया ने जो नाम रखाने वास्ते महाराज ने लिया गया श्री अकाल तख्त साहब छेवें पातशाह मीरी पीर के मालिक बंदी छोड़ सतगुरों ने आपका नाम इस प्रकार श्री तेग बहादुर साहब रखा। आप जी का बहुत भागों भरिया मस्तक है जेड़ा बंदर बड़ा सुंदर चमकीला है सूरज में भी मात पाँगा सब प्रकाश है चंद्रमा भी आपके तेज में देख के सिक्का पै जाता है। आपके मित्र बड़े सुंदर कटारिया दी चौड़े हैं जो सोहने नक दिन लंबड़े बाला सुंदर केस हम आपके शरीर उत्ते गरीब नवाज सच्चे पातशाह जिन्हें सोने का धरिया होया आकार होंगे है महाराज साहब का स्वरूप है गुरु तेग बहादुर साहब का। गरीब नवाज कंचन कायम सोने की ताला जिन्हें धरिया होया सोना होंगे कंचन वर्गी काया है महाराज साहब जी। इस प्रकार गरीब नवाज जी का स्वरूप सुंदर सज रहा है। आप महाराज नू नमस्कार करके इतने श्री अकाल तख्त पास नीवी पा के महाराज साहब समाधि में जुड़ जाते हैं इस प्रकार बैठे समा बतीत करते हैं फिर जब समा प्राप्त होंगे सतगुरों के आप दर्शन करते हैं दर्शन करके एक बार नेत्रों नू आपके सफले करके फिर समाधि की जीवन गुरु साहब जी हो जाते हैं। इस प्रकार महाराज साहब की 13 साल की अवस्था होगी गुरु तेग बहादुर साहब जी माता नानकी जी गुरु साहब जी ने महाराज पूछे कि सच्चे पातशाह जी नवाज जी ये थोड़ा जरा छोटा पंजवा सपुत्र है ये कोई होर साहब जाके सारे विहार कार करते हैं ये किसी विहार में सत्या नहीं दिंदे आपके दर्शन कर आ जाते हैं दर्शन करके समाज में बैठे रहते हैं तो गुरु महाराज साहब जी उस वक्त सत्कार करके गुरु तेग बहादुर साहब का सिर पर हथ रख के प्यार कहते हैं कि हे नानक।

अगे संतां नूं प्रचार कीता उदू अगे इसे प्रकार तरीके चलदे बाबा चंदा सिंह जी ज्ञानी होए उन्हें।

0: जहां खले कलगी तर तेर और प्रमोद तर पहुंचे तेर।
1: जदों जंग जित लिया फतेह पा लई जिथे कलगी धर महाराज धीरज धारी सतगुरु धीरज धार के खड़े ने उथे जा पहुंचे सारे।
0: सैदा बेग उतर है तरे गुर के चरण बंद ना करे।
1: सैदा बेग घोड़े तो थले उतरिया आके उन्हें सतगुरु महाराज जी नूं मत्था टेकिया।
0: बोले प्रभु उम्र बरकरार मिले सुखोब इन तकरार।
1: महाराज ने इस तरह का वचन किया कि लंबी उम्र होवे तेरी और तू बड़े सोहने समय ते बड़ा चंगा मौका सी जदों तू आके सानू मिलिया है।
0: सैदा बेग समझ तू बेग आहो कंधारी बंद तेग।
1: महाराज कहन लगे सैदा बेग तू बेग तो भाव छेती इस गल नूं समझ लै हुण याद कर लै बीतिया समा अपना उन्हां जन्मां दे विच तू कंधारी सैं ते तेग बंधा हुंदा सी सोहणी तेग चंगा लोहा लिया के कुटना मुठे बनाउणे सोहणे शस्त्र बंधा हुंदा।
0: पूरब गुरु नानक तुम मिले सेवा करी होती तब भले।
1: जदों असीं पहलां गुरु नानक देव जी दे जामे दे विच सां

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लेके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हूं उन्होंने चंगिया निहारियां खवाइया चंगा घ्यो आदक जा देना या मिठा पा के देना ऐसिया निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा ले आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ए तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए तैयारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे सो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के, इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव के सगे है के जवे, उकसे उपर चढ़बे तवे।
0: ये जेडे घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रब आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धि सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने, माता जी

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी
1: पंथ खालसा हो जस थोरा
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच
1: पयत कहो कहो को टोरा
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते
1: सकल सत्र को हाथ कर कैसे
0: सारे दुश्मनां नूं मार करके किस प्रकार
1: राज पाए किम कहिए तैसे
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते ए तां इन्ने ज्यादा ने तुरक तो फिर पहाड़िए होर राजे ए खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है ए दसो मेरे मन दा शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा
1: वधे तेज किम लहे धरने
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्हां ने
1: ठहरे राज कौन कर करने
0: इन्हों का राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा
1: बहुतन की किरत अलप करें किम
0: ए बहुतियां दी किरत बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने काम करना है ए हजार बंदा किवें कर सकता है मैं तो यह पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा बड़ा है
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू
0: सारे दुश्मनां दे उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा
1: हान लाभ जाने इस बेरा
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा किस तरह राज करेगा
1: वर्त

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यों कहने समाधि ला ली, गुर चरणा विच समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पर सुने कलयुगता का दास।
0: जिहड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, ये साखी नूं सुने, कलयुगों दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओहदे भज जाणगे, भगती ओहदे हिरदे जागेगी, तन गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जिहड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नूं सोहणा सुनाया इतिहास। आने वाला समा मुकदी गल मुकाईए भई, अमर छको दाड़ियां जिहड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इको ही बचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी ये सारिया चीजा तो विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच, अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग के जीवां नूं शंके बहुते हुंदे ने। शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तो सारे नालों सौखा काम महाराज एक कह देण भी वह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, वह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। यह साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, यह कहण दा की फायदा, फिर की बनेगा, गात्रा पा के की बनेगा, अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों। इसे करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो, सारिया गल छड़ दो पर नहीं मानते, फिर भी कहें आह गल क्यों आ, किवें इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहते जे सारे जने एक ही बचन मान लो, उस विच ही भला है। महाराज वो केड़ा बचन

0: आप जी ने यह कलयुग के समय के वीर योधा खालसा प्रगट किया है जो सारे नालों उत्तम है श्रोमणी है
1: सर्ब श्रोमण खालसा रचियो पंत सुखदाए।
0: ये सारे नालों श्रोमणी खालसा पंथ जो हर प्रकार के नाल समर्थ है जो सुख दे देण वाला सुख नूं भोगण वाला दूसरियां नूं सुख देण वाला पर उपकारी पंथ रचिया है।
1: बिनेक गंदे धूम ते जग में अदक सुहाए।
0: एक कौम है एक खालसा पंथ है जेड़ा एक जो गंदा धुआं है तंबाकू उहदे तों रहत हो के जगत दे विच शोभनीक हुंदा। बाकी लोग कोई भी है भावें गंदा धुआं सारी दुनिया पींदी है।
1: पूछे परम सुप्रेम कर रहनी को बिरतंत।
0: हुण रहनी पुछदे ने सारे जाने कि परम प्रेम दे नाल पुछदे ने कि जिहड़ी खालसे दी रहनी बहनी है यह कैसी होनी चाहीदी है।
1: किसको देवे किमर है कैसे वरतै संत।
0: ए संत स्वरूप खालसा संत सिपाही खालसा इहदे विच हुण साडा है कि ग्रिस्तियां दा अगे तां किसे नूं होर दान दिंदे सी पर आप जी ने कहा दान दियो इन ही को भलो और नाले हुण होरनां नूं दान बंद कर दिता आपने। हुण इह भी दसो कि दान किहनूं दईए किवें रहीए वरतारे विच रहत मर्यादा अपनी रहनी बहनी विच किवें रहीए ते इहदे नाल नाल कैसे वरतों संत किस तरीके नाल वर्तना करिए संत खालसा नाल।
1: गुरु कै सुन खालसा केस पाहुली मुकत।
0: महाराज जी ने वचन किया सुनो खालसा जी जेड़ा केस रखे हुए ने खंडे बाटे दा अमर छक के ककारां दी मर्यादा नितनेमी प्रेमी है ये तां पक्का ही मुक्त है जेड़ा कुरहितां तों बचिया होवे।
1: खंडे की सब ते भले कै चरणन की।
0: खंडे दी हुण असी पहल बख्शिश कीती है जां पहलां चरण पहल बख्शिश कीती सी खालसे नूं सो इस करके सारयां नालों श्रोमणी खंडे बाटे दा अमृत है।
1: युग युग में हम अवतर है अपने भगतन काज।
0: युगां युगां दे विच असीं अवतार भेजदे हां जां आप आउंदे हां अवतारां नूं भी भेजदे ने हुक्म करके क्योंकि बाहर नहीं है कोई महाराज जी तों। इस करके महाराज कहिंदे जदों जदों दुनिया दे उत्ते भीड़ा बणदी है जिन्नी कि समर्था की लोड़ है नित अवतार नमित अवतार फिर अंसा अवतार अवेशा अवतार एक कला अवतार पूर्ण अवतार छे तरह के अवतार भेजते हैं। जदों देखिया कि हुण किसी तो कम नहीं बनता फिर असी खुद आप चल के सृष्टि उत्ते आउंदे हां।
1: रहनी रह तो खालसा सो मेरो सिर ताज।
0: जेड़ा रहनी दे विच रहिंदा वो मेरा खालसा है ये नहीं कि सारे अपने आप नूं खालसा लिखी जान जां समझी जान खालसा रहत मर्यादा वाला ही खालसा है वो मेरा सिरताज है वो मेरे सिरताज गुरसिख जिन्हां दे महाराज कहिंदे मैं दर्शन करके खुश हुंदा हां जो मर्यादा दे विच परपक हन।
1: धरै केस पाहुल बिना भीखी मूरख सिख।
0: आवे कि अमृत जरूर छको क्योंकि अमृत छकिया रहत का धारणी हुंदा है एवें रहत कोई नहीं रखता क्योंकि रहत बिना जीवन पलटा नहीं खांदा इसलिए केस अमृत ते रहत जिहड़ी है ये आपस विच बहुत जरूरी है। जे हुण कोई बंदा धरे केस अमृत छके तो बिना उहनूं की कहिंदे भेखी है उह मूर्ख सिख कहिंदे केस दिखा के ये दाढ़ी रख के ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਖ ਦਿਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਕਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਲੈਂਦਾ।
1: ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੈ ਸਿੱਖ।
0: ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੈ। ਇਹ ਸੌ ਸਾਖੀ ਚ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਭਿੱਖ ਹੈ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ਚ ਉਕਾਈ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਭੇਖੀ ਮੂਰਖ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵੱਜ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੌ ਸਾਖੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਪਾਪੀ ਤਿਆਗੈ ਭਿੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਖ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ।
1: ਏਕ ਮਜ਼ਹਬ ਰਹਿਣਾ ਭਲਾ ਦੋ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ।
0: ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟੇਕ ਕੇ ਰਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ।
1: ਮੇਰੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਏ ਕੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਸੋਏ।
0: ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਭਰਮੇਗਾ ਭਟਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੱਧੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਚ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ

0: अपने को प्रतक प्रमाण के दसवें पातशाह का घोड़ा नहीं अगे बढ़ रहा। महाराज ने चाबक मारे, घोड़ा ना हिलिया। कहने इनू की हो गया, अगे नहीं बढ़ रहा। महाराज समझ गए, कहने भाई अगे तंबाकू का खेत है, इस करके साडा घोड़ा ये अगे नहीं जा रहा। ताते महाराज ने ये साडे लिए ऐसे कौतक वरताए ने जिन्हां तो सानू ज्ञान हो जावे।
1: सकल पाप जे भूम में बसे आए भगवान, श्रोता बक्ता को लगे कबे न पूज करांज।
0: श्रोता ते बक्ता दोवां नूं लगदे ने, कदे भी इन्हां दी पूजा नहीं करनी। कुछ कहते ये समझाउण दा महाराज ने कहा कि जेड़े बंदे तंबाकू का सेवन करते ने फिर लोगों नूं उपदेश करते ने कई प्रकार का, कहिंदे उह वी माड़ा है, उन्हूं भी सारे पाप लगते ने। जेड़े बंदे उन्हां दे उपदेश सुनते ने उन्हां नूं भी पाप लगते ने। क्यों? जिहड़ा उपदेश करन वाला बंदा हुंदा है वह बिल्कुल ऐन अच्छा साफ सुथरा स्वच्छ जीवन वाला होवे तां तां ठीक है। जे उपदेश करन वाला बंदा खुदे सब कुछ खाई पी जांदा है फिर उहदियां गल्लां तों थोड़ा थोड़ा प्रतीत होण लग जांदा आपां नूं, ते उह गल्लां गल्लां च कह भी दिंदा कि कोई गल नहीं आ भी खा लो, इहदा वैसे कोई खास डर नहीं, फलानी चीज का डर नहीं, माड़ी मोटी पी भी सकते हैं, इहदा भी कोई डर नहीं। उस संगत नूं भी नाल खराब करता है, यह कई थावां ते होया भी है। तो इस करके पुराने समय विच भी महाराज ने यही गल दर्शाई कि जिहड़े उपदेश करता लोग ने खास करके, तो वह उपदेश करन वाले जिहड़े ने उन्हां नूं यह ध्यान देना चाहिए कि वह माड़ी चीज की वरतों ना करन, क्योंकि संगत उत्ते

0: सुपते निसमै सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं।

इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतान उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है, सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी, क्योंकि जदों मन दे अंदरों दुविधा मिट जाती है सारे व्यापक एको ही रूप दिखता है, उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना केड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तो भी कोई डर नहीं सी, पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तो है वो बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी, आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वो शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कविया गुणिया ज्ञानिया पंडितों नाल कर रहे हैं। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी, इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आउणगे, सुते सिद्धी सतगुरु कविया की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी क्या है, किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे, चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते, कवियां दे ज्ञान नूं परखना उन्होंने जवाब देने ने, उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं, असल विच ये गल इस तरह नहीं है, ये गल इस तरह है, क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करे प्यार सत्कार। आओ श्रवण करते हाँ, प्यार सत्कार दर्शनों करिए पवित्र गद के आ

0: महाराज ने इनू करण पर्व लिखण दा ही दिता। बड़ी जड़ी बख्श सी ना महिमा वो प्राप्त कीती है। इस तरीके दे नाल छंदाबंदी दी सोहनी चाल इन्हें लिखी। कवरेश ने जो कवरेश केशोदास दा लड़का होया कवि, ये कवरेश ने द्रोण पर्व जिहड़ा है ना ये भाषा करके सुनाया। ते हंस राम जिहड़ा कवि दी पथानका तो पता लगता है कि हंस राम दा अगे नाम आवेगा। इन्होंने करण पर्व का टीका किया महाराज के कहने से, अमृत राय ने नहीं किया। सो हंस राम तां करके करण पर्व आरंभ अमृत कवि ने लिखिया। जिहड़ा अमृत राय है उन्हें लिखिया सी सभा पर्व। इन्हें तो यह पटियाले लाइब्रेरी विच भजवीर सिंह जी कहते पिया है ये करण पर्व सभा पर्व जिहड़ा उन्हां कवियां ने लिखिया सी। ते हंस राम लिखदा कि 60,000 रुपया मैनू करण पर्व का इनाम मिलिया दसवें पातशाह कोलों। जिवें उन्होंने अपनी कविता च लिखिया, प्रथम किरपा कर राख कर गुरु गोबिंद उदार, टका करे बख्शीश तव मोको 60,000। यह करण पर्व भी पटियाला लाइब्रेरी विच ही पिया है। सो इस करके महाराज कवियां नूं 60,000, किसी नूं 1,00,000 रुपया, 2,00,000 रुपया, पहला कवि जी कह आए ने करोड़ करोड़ रुपया भी सतगुरु महाराज ने कईयां नूं बख्शिश कीता है।
1: पावन कवि गिनती मैं नीत रहन टेर खावे चेत।
0: 52 सोहने कवि, अच्छे टॉप दे कवि जिहड़े सी दुनिया भर दे विच्चों दसवें पातशाह ने अपने कोल रखे। हर रोज उन्हां तों इहदे विच इह किंतु आम लोगों भावें आ जाए, पर आप संगत जो हाँ यह गल है कि सतगुरु भावें किसी के सिर पर हाथ रख के लिखवा लैन किसी भी चीज नूं, सतगुरु सीधा लिख देन इहदे उत्ते नहीं किंतु करीदा हुंदा कि महाराज ने उह तां कवि तो लिखवाया जां लोग जिवें किंतु करदे इह तां किसी कवि की बाणी है। इस तरह की गल नहीं है। महाराज दसवें पातशाह लिखवाउंदे ने आप कृपा करके। ये आपां थोड़ा जिहा अगे चल लईए, ये प्रमाण अपने सामने आप ही आ जाएगा। एक कवि जिहड़ा आवेगा महाराज दे पास, जिहड़ा ये दसवें पातशाह नूं कहेगा कि महाराज कित्थे किसे नूं कविता आउंदी है, जिहड़ा तुहाडे कोल आ जांदा है, जिहड़ा तुहाडा नाम भी लै लैंदा है, उहनूं कविता रचनी आ जांदी है। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने कह के लिखवाइया। ये नहीं हुंदा कि महाराज आप कलम पकड़न ते लिखण। अगे तां हुण जिवें कोई अज दे युग विच बंदा ये कहे कि गुरु ग्रंथ साहिब दसवें पातशाह ने आप तां नहीं लिखिया दमदमा साहिब, ये तां भाई मनी सिंह ने लिखिया, एवें लोकां च शंका ही पाउणी है। लो शंका पा दिंदे आपां हुण। शंका दी कीहड़ी गल है, शंका खड़ी भी पहलां भी तां भाई गुरदास जी ने गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप लिखिया, ये तां गुरु अर्जन देव जी ने लिखिया हैगा। ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹਨ।
1: ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਤ ਪਾਏ।
0: ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੇ।
1: ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕਰ ਤੈਂ ਆਇਓ ਨਿਜ ਵਿਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਵਡਾਇਓ।
0: ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।
1: ਕੀਨ ਸਵਈਆ ਅਰਥ ਛਪਾਇਓ ਅਬ ਲਾਖਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਖਾਇਓ।
0: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਝ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖਣ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ ਬੈਠ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਨਿਟ ਬਖਾਨੀ।
0: ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, کول بیٹھ کے اس طرح بولیا
1: دیش دیش میں راور کیرت جس جس تے سنیت بستیرت
0: تہاڈی جڑی مہاراج مہما ہے نا بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے دیشاں دیشاں دے وچ ودیشاں دے وچ سمندروں پار تک تہاڈی مہما ہے
1: سب بدیا کے گنی بخانے رہ سبا تمری سنمانے
0: سارے پرکار دی ودیا دے جڑے گنی لوک نے کہے جاندے نے ایک چیز ہے مہاراج کتے سانوں کوئی پوچھتا نہیں ستکار نہیں دندا پر تہاڈی سبا دے وچ آ کے سنیا ہے کہ ہر ایک نو